0: जी
1: वेलकम टू दिस प्लीज प्रोसीड
0: Avenue to the alarm. Okay. Your driver training.